0: रूपा।
1: हाय दीपू।
0: मगर कितने विशेष जवान डालेंगे?
1: विशेष का है ना रे, पप्पा का रखते जवान करो।
0: पप्पा का रखते तो त्याई से चांद को संगत आते आई स्पिरिट रिक्ता लो तो यों कुनो है मुलारी और तो घंटों से ये संगले बरी पुर्ची गजल कितने जली काय जाप दियो नहीं
1: कंची पुर्ची गजल कंची जापू
0: ये और भी ना लगे एक लेटर दिल ले रहे तू का दियों को मेलो नांगे
2: हावे बाप त्या गिब्बाचेर दुबाव गेलो आले रे बोऱ्यान सांगता आनी मुखार म्हणजे जालांच्यान पास जाल्यार हात पाय म्हणून जाता पास नाचले नाचल्यार ये देशा प्रायर भुरग्यांचो अहंकार धोर येत हांकां आता तशें जाल्यार मुखार कशें
3: काय
2: रे तुजे
3: दिसता कितें म्हणून